निरंकता पुरख, निरभव, निर्वैर, अकाल मूरत, अजूनी सैभं गुरप्रसाद। इस नूं मूल मंत्र कहा जाता है। श्री गुरु नानक देव जी ने उस अनंत परमेश्वर के स्वरूप का वर्णन इस मूल मंत्र विच दे दिता है। इस दे अखरी अर्थां नूं समझिए। एक परमेश्वर एक है, दो जां तीन नहीं। ओंकार रजो तमो सतो गुण तो परे परमेश्वर सर्वव्यापक है। सत नाम, उसका नाम सच है। कर्ता पुरख, इस सगल जगत का कर्ता परता वो प्रभु आप ही है। निरपाओ, परमेश्वर आप ही जदों लीला रच रहा है, आप ही ओ जीव जगत हो गया। जद उस तो अलावा होर कोई है ही नहीं, तो फिर उसनु डर किसता। निर्वैर, आप तो आपनु वैर भी संभव नहीं, सो प्रभु निर्वैर है। अकाल मूरत, परमेश्वर काल समय तो बाहर है। काल विच जन्मी हर मूरत मरणशील है। परमात्मा दा रूप अकाल है, समय तो बाहर है। अजोनी, प्रभु किसी भी जोनी विच कदी भी नहीं आवेगा। जिसका जन्म कदी ना होवेगा, ऐसे परमेश्वर में अजोनी क्या जानता है। सैभं, परमेश्वर स्वयं प्रकाश है। गुर, परमेश्वर ज्ञान स्वरूप है, चेतन स्वरूप है। प्रसाद, प्रसाद तो भाव है आनंद रूप। जिसने भी ज्ञान रूपी गुरु दे जरिए उस परमेश्वर नु जानिया, वो आनंदित हो जाएगा। मूल मंत्र विच साधक वास्ते साधना दा राह भी है, सुझाव भी है, और अंतम रूहानियत दी मंजिल विच जाके जो अनुभूति होवेगी वो भी इसी मंत्र विच है। इसी कारण इसनु मूल मंत्र कहा जाता है। भावना, एकाग्रता अते श्रद्धा नाल इस मूल मंत्र दा कीता गया जप साधक दे जीवन च शक्ति ते भक्ति नू लेके आवेगा।

उम्मतें और भी हैं, उनमें गुनाहगार भी हैं, इज्वाले भी हैं, मस्तमय पिंदार भी हैं, इनमें काहिल भी हैं, गाफिल भी हैं, होशियार भी हैं, सैकड़ों हैं कि तेरे नाम से बेजार भी हैं, रहमतें हैं तेरी।

ये घर महबूब हक का है, मदीना है मेरे साईं। यहां तो जर्रा जर्रा तूर सीना है मेरे साईं। कयामत तक उसी से झोलियां भरते रहेंगे हम, नबी की रहमतों का जो खजीना है।

0: noticed the way fans shout at football matches?
1: Oh, wake up!
0: That's because conveying your message with sound is the most effective way to communicate to the players on the pitch that they're rubbish. And this works in advertising too. You see, research shows how brands that use radio to amplify their advertising are 49% more likely to get noticed. See radio differently at radiocentre.org.
2: बहन, तुमने शादी पर दुल्हन का जेवर देखा था? इतने प्यारे डिजाइन तो मैंने कहीं नहीं देखे। पता नहीं कहाँ से बनवाया होगा, इतना खूबसूरत सेट और चूड़ियाँ।
3: मैं जानती हूँ, उन्होंने सारा जेवर सोफिया बहन की सोफी ज्वेलर्स से बनवाया है। शादी में हर कोई जेवर की तारीफ कर रहा था।
2: सोफी ज्वेलर्स, वो कहाँ है?
3: सोफी ज्वेलर्स, 1192121 ओक लेन, ब्रैडफोर्ड 9, टेलीफोन 01274056014। सोफी ज्वेलर्स।

0: Looking for a quality home to rent?
1: Whether you need a 1, 2, or 3-bedroom apartment or house, rent direct from a trusted family landlord with over 53 years of experience.
0: Nearmal Second Group offers a wide range of fully furnished properties, many with private parking, across Bradford, Huddersfield and Wakefield. With flexible tenancy options and homes available now, finding your next home couldn't be easier. Call 01274 744 62 or 077 900 35358. Nearmal Second Group. Quality homes from a landlord you can trust.
2: क्या आप अपने कारोबार को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं? सनराइज रेडियो के साथ तशहीर आपके ब्रांड की पहचान बढ़ाती है, सारिफिन का एतमाद कायम करती है और आपके कारोबार को मुसलसल याद रखवाती है। यॉर्कशायर, मैनचेस्टर, ईस्ट लिंकशायर और मिल्टन केन्स में नशरियात और मजीद इलाकों में बहुत जल्द। हमारी महदूद मुद्दत की खसूसी ऑफर के लिए आज ही कॉल करें 012-747-3504-3।

0: जायकातुल मौत।
1: मुस्लिम फ्यूनरल सर्विस में कफन दफन फूलों का इंतजाम इस्लामी शरीयत के ऐन मुताबिक गुस्ल मैयत के लिए औरत और मर्द मौजूद हैं। टॉप क्वालिटी ग्रैनाइट मार्बल के हेडस्टोन्स और फुल कबर को 30 साल की गारंटी के साथ बनवाने के लिए भी मुस्लिम फ्यूनरल सर्विस का नाम याद रखें। मुस्लिम फ्यूनरल सर्विस, 4 डार्फील्ड स्ट्रीट ऑफ लॉन्गलैंड, ब्रेडफोर्ड 1, टेलीफोन 7230303 दास ब्रेडफोर्ड 7230303।
2: Be part of something extraordinary at the Racial Equity Network Dinner, Leeds Bradford 2026.
3: On Friday the 23rd of October at the Madison in Bradford, join leaders, educators, entrepreneurs and community changemakers for an inspiring evening of discussion, networking and new ideas.
2: Hear influential speakers, share experiences and discover opportunities to make a positive impact.
3: Places are limited. Search REND Leeds Bradford on Eventbrite or call 0770 6923 788.
4: Official media partner, Sunrise Radio.

0: Sunrise Radio. Hit after hit. The hits of today and the hits of tomorrow. A Sunrise Radio hit of the hour.
1: अजीब गल है जी, यादों पे अपना कंट्रोल ही नहीं रहता है। मैंनू ओपल याद नहीं जब मैं पैदा होया, मेरी पहली दिवाली या मेरा पहला खाया परौंठा मैनू याद नहीं, पर दुनिया की सब तो मीठी आवाज जब मैं पहली बार सुनी वो पल मैनू अज भी याद है। इन्ना सोहना चेहरा मैंने कभी नहीं देखा था जी।

0: Be part of something extraordinary at the Racial Equity Network Dinner, Leeds Bradford 2026.
1: On Friday the 23rd of October at the Madison in Bradford, join leaders, educators, entrepreneurs and community changemakers for an inspiring evening of discussion, networking and new ideas.
0: Hear influential speakers, share experiences and discover opportunities to make a positive impact.
1: Places are limited. Search REND Leeds Bradford on Eventbrite or call 0770 6923788.
2: Official media partner, Sunrise Radio.
3: कुल्लो नफसेन जायकतुल मौत
4: मुस्लिम फ्यूनरल सर्विस में कफन दफन फूलों का इंतजाम इस्लामी शरीयत के ऐन मुताबिक गुस्ल मैयत के लिए औरत और मर्द मौजूद हैं टॉप क्वालिटी ग्रैनाइट मार्बल के हेडस्टोन्स और फुल कबर को 30 साल की गारंटी के साथ बनवाने के लिए भी मुस्लिम फ्यूनरल सर्विस का नाम याद रखें मुस्लिम फ्यूनरल सर्विस 4 डारफील्ड स्ट्रीट ऑफ लॉमलैंड ब्रेडफोर्ड 1 टेलीफोन 7230303 ब्रेडफोर्ड 7230303 जीरो

0: कोई परोंठे शुरूठे नहीं मिलन लगे। किचन विच सारा सामान मकिया पिया है। आटा चावल दाला गोश्त सब्जियां हर चीज लेन जाओ ते अद्धा दिन लग जाना है।
1: तुसी फिकर ए ना करो जी, हने ए एशिया सुपर स्टोर जाने ते सारी शॉपिंग करके ले आने। उन्होंने नवी ब्रांच भी खोली है जिथे हर किस्म दा किचन ते घरेलू सामान बड़ी मुनासिब कीमता ते मिल जाएगा और गोश्त भी उत्थों ही लवांगे।
0: वाह जी, चलो फिर आके परोंठे भी बनाने। नहीं,
1: एशिया सुपर स्टोर, साउथ फील्ड रोड, ब्रैडफोर्ड 5, टेलीफोन 01274464446।
2: Have you tried Caratino Better Ghee, the healthier, low-cost butter ghee alternative? Caratino Better Ghee is around half the price of pure butter ghee, but it's cholesterol-free and lower in saturated fats. Caratino Better Ghee tastes just like the finest butter ghee in cooking and is great for making healthy and delicious family meals. Look out for Caratino Better Ghee at Tesco, Asda, Morrisons and quality local grocery stores.
3: A classic hit. Flashback. Flashback. As we go down memory lane. Where were you when you first heard this?

0: बहन, तुमने शादी पर दुल्हन का जेवर देखा था? इतने प्यारे डिजाइन तो मैंने कहीं नहीं देखे। पता नहीं कहाँ से बनवाया होगा, इतना खूबसूरत सेट और चूड़ियाँ।
1: मैं जानती हूँ, उन्होंने सारा जेवर सोफिया बहन की सोफी ज्वेलर्स से बनवाया है। शादी में हर कोई जेवर की तारीफ कर रहा था।
0: सोफी ज्वेलर्स, वो कहाँ है?
1: सोफी ज्वेलर्स, 1192121 ओक लेन, ब्रैडफोर्ड 9, टेलीफोन 01274056014। सोफी ज्वेलर्स।
2: फ्री कोर्सेज एट शिपली कॉलेज, free teaching assistant courses, free health and social care courses, free childcare courses, free business and digital skills courses. Want a good job? Want to earn more money? Want to make your family proud? You can learn for free at Shipley College, subject to eligibility. No qualifications. Didn't go to school in the UK? Go to the Shipley College website.

0: के दोष पर उड़ते परिंदों के परों की ओट में और दुनिया के गोशे गोशे में सुनी जाने वाली आवाज ये आपके अपने सनराइज रेडियो की है जो कि 103.2 एफएम स्टेरियो पर और 100.6 एफएम पर पूरे वेस्ट यॉर्कशायर में सुनाई देता है। अगर आप डीएबी पे सुनना चाहें तो आप ब्रेडफोर्ड, कीतले, इल्कली, स्किप्टन, लीड्स, हेलीफैक्स, मैनचेस्टर, ईस्ट लंकाशायर, ब्लैकबर्न, बर्नले, डार्विन, नेल्सन, अक्रिंगटन और मिडल कीन्स में आप हमें सुन सकते हैं। अगर आप एप्पल ऐप स्टोर और गूगल प्ले स्टोर पर सुनना चाहें तो भी सुन सकते हैं। और अगर आप दुनिया के किसी भी कोने में बैठे हैं सनराइज रेडियो को सुनना चाहते हैं तो आप हमें वेबसाइट पे सुन सकते हैं। हमारी वेबसाइट का एड्रेस रहेगा www.sunriseradio.fm पर। आमिर शहजाद की तरफ से अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग टू यू ऑल। हम उम्मीद रखते हैं जहां तक हमारी आवाज पहुंची होगी आप सबको खैरियत के साथ पाया होगा। अगर खुदा न खास्ता आप बीमार हैं तो हम दुआ करते हैं अल्लाह आपको सेहत और तंदुरुस्ती अता फरमाए। साथ में ये भी उम्मीद रखते हैं आपकी सुबह का आगाज अच्छा हुआ होगा। दुआ करते हैं आपका दिन भी अच्छा गुजरे। तो दोस्तों प्रोग्राम लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूँ इस उम्मीद के साथ कि आप हमारा साथ निभाएंगे। दो बजे तक हमारा और आपका साथ है, जरूर साथ निभाइएगा। तो चलते हैं प्रोग्राम को शुरू करते हैं हिट ऑफ द आवर के साथ और ये शोक और चंचल गीत आप सभी सुनने वालों के नाम।
1: Hit of the hour is brought to you by Sophie Jewelers, with a wide range of designs of all kinds of jewelry. Sophie Jewelers, 119-21-21, Oak Lane, Bradford 9. Call 01274-056-01.

0: जी दोस्तों, अभी आपने हिट ऑफ द आवर सुना, यकीनन आप दोस्तों ने एंजॉय किया होगा। मौज मस्ती वाला गीत था अभिजीत और कविता कृष्णमूर्ति की आवाजों में। इसके साथ ही चलते हैं जनाब, टाइम चेक कर लेते हैं।
1: सनराइज रेडियो, योर साउंडट्रैक, योर टाइम चेक।
0: दोस्तों, हमारे स्टूडियो की घड़ियां जो हैं वो बता रही हैं 11:15, यानी कि 11:15। तारिक जुल्फी साहब, शुक्रिया फ़ोन करने का जनाब। आप प्यारा सा गीत सुनना चाहते हैं अशवाक भाई के लिए, हीरा साहब के लिए और दीगर तमाम दोस्तों के लिए। और वाजिद भाई एडर्सफील्ड से आपने भी फ़ोन किया, शुक्रिया आपका भी फ़ोन करने का। और ये मस्ती भरा गीत जो है गुलाम भाई आपके नाम भी करेंगे और दीगर तमाम दोस्तों के नाम करेंगे। तो चलते हैं, सुनते हैं कमर्शियल, कमर्शियल के बाद दोस्तों मुलाकात होती है।
2: 24 hours a day. Sunrise Radio.
3: Be part of something extraordinary at the Racial Equity Network Dinner, Leeds Bradford 2026.
4: On Friday, the 23rd of October, at the Madison in Bradford, join leaders, educators, entrepreneurs, and community changemakers for an inspiring evening of discussion, networking, and new ideas.
3: Hear influential speakers, share experiences, and discover opportunities to make a positive impact.
4: Places are limited. Search REND Leeds Bradford on Eventbrite or call 0770 6923 788.
5: Official media partner, Sunrise Radio.
6: कुल्लो नफसेन जायकतुल मौत।
7: मुस्लिम फ्यूनरल सर्विस में कफन दफन फूलों का इंतजाम इस्लामी शरीयत के ऐन मुताबिक। गुस्ल मैयत के लिए औरत और मर्द मौजूद हैं। टॉप क्वालिटी ग्रैनाइट मार्बल के हेडस्टोन्स और फुल कबर को 30 साल की गारंटी के साथ बनवाने के लिए भी मुस्लिम फ्यूनरल सर्विस का नाम याद रखे। मुस्लिम फ्यूनरल सर्विस, 4 डार्फील्ड स्ट्रीट ऑफ लॉमलैंड, ब्रेडफोर्ड 1। टेलीफोन 7230303 0, that's Bradford 7230303.

जी दोस्तों, अभी आपने ये मस्ती भरा गीत सुना, तो अब चलिए एक और प्यारा सा गीत आप दोस्तों के लिए पेश करते हैं। चौधरी मुजफ्फर साहब, फ़ोन करने का बहुत शुक्रिया जनाब। आपने तमाम दोस्तों को सलाम अर्ज़ किया, सबके लिए एक प्यारा सा गीत सुनना चाहा, तो आपके दोस्तों के नाम और दीगर तमाम सुनने वालों के नाम ये प्यारा सा गीत, इंजॉय कीजिएगा।

0: जी दोस्तों, अभी आपने बहुत ही प्यारा सा गीत सुना, बहुत अच्छी शायरी के साथ। और इसके साथ ही जनाब वक्त हमें बता रहा है कि कमर्शियल का टाइम हो गया है। कमर्शियल के बाद आप एक प्यारा सा गीत सुनेंगे, मेरी जन्म से आप तमाम सुनने वालों के नाम होगा। तो चलते हैं दोस्तों, सुनते हैं कमर्शियल, कमर्शियल के बाद गीत, गीत के बाद मेरी और आपकी मुलाकात होती है। अगर प्रोग्राम में शामिल होना चाहें तो आपके लिए लाइनें खुली हैं, नंबर होगा 01274306666।
1: 24 hours a day. Radio. Looking for a quality home to rent?
2: Whether you need a 1, 2, or 3-bedroom apartment or house, rent direct from a trusted family landlord with over 53 years of experience.
1: Nirmal Second Group offers a wide range of fully furnished properties, many with private parking, across Bradford, Huddersfield, and Wakefield. With flexible tenancy options and homes available now, finding your next home couldn't be easier. Call 01274 744-62 or 077-900-35358. Nirmal Second Group. Quality homes from a landlord you can trust.
3: Have you noticed the way fans shout at football matches?
4: Oh, wake up!
3: That's because conveying your message with sound is the most effective way to communicate to the players on the pitch that they're rubbish. And this works in advertising too. You see, research shows how brands that use radio to amplify their advertising are 49% more likely to get noticed. See radio differently at radiocentre.org.

जी दोस्तों, अभी आपने प्यारा सा गीत सुना, यकीनन आप दोस्तों ने इंजॉय किया होगा। अब आने वाला गीत भी बहुत ही प्यारा गीत है, मेरी जानिब से तमाम सुनने वालों के नाम, जहां कहीं भी हैं, दुनिया के किसी भी कोने में बैठे हैं, सनराइज रेडियो को सुन रहे हैं, तो आपके नाम किया जनाब ये प्यारा सा गीत।

0: जी दोस्तों साथियों, ये आपका अपना सनरा रेडियो है और आमिर शहजाद आपसे मुखातिब है। और दोस्तों, दो प्यार भरी आवाज़ों में आपने प्यारा सा गीत सुना। इरा खान साहब, आपने जिस गीत की फरमाइश की, हाय सदके जवां, गाना तो बहुत अच्छा था, लेकिन हमारे सिस्टम में नहीं है जनाब। तो सदा बार पुराने गीत की बारी आती है, अभी तो कोई और गीत चुनते हैं, देखते हैं कौन सा गीत आप दोस्तों के लिए पेश करें। पुराने गीत तो काफ़ी, मैं तो मन चाह रहा है कि आज सावन आए सावन जाए वो सुनते हैं। क्या ख्याल है हीरा साहब? वो काफ़ी अर्सा हुआ मैंने गाना नहीं लगाया, तो वो सुन लेते हैं अखलाक अहमद की आवाज़ में। तो चलते हैं दोस्तों, पहले टाइम चेक करते हैं।
1: सनराइज रेडियो, योर साउंडट्रैक, योर टाइम चेक।
0: दोस्तों, हमारे स्टूडियो की घड़ियां बता रही हैं 11:45, यानी कि 11:45। तो चलेंगे जनाब, अब आप दोस्तों के लिए कमर्शियल पेश करते हैं। कमर्शियल के बाद अखलाक अहमद की आवाज़ में प्यारा सा गीत होगा। हीरा खान साहब आपके नाम, चौधरी मुजफ्फर साहब आपके नाम, तारिफ जुल्फी साहब, वाजिद भाई एडर्सफील्ड से, और ग़ुलाम भाई, सफ़ीउल्लाह भाई, और दीगर तमाम दोस्त जो इस वक्त हमारे प्यारे दोस्त चौधरी मुनीर साहब चक्की वाले, उनके नाम भी और दीगर तमाम दोस्तों के नाम करते हैं। तो चलते हैं, सुनते हैं कमर्शियल, कमर्शियल के बाद गीत, गीत के बाद मेरी और आपकी मुलाकात होती है।

0: ते पैरें ये जुतियां भी कसी गियां पर सस्ता सोना नहीं मिलिया।
1: ओहो ते तुसा चाचे को जाओ ना।
0: चाचा केड़ा चाचा?
1: चाचा जूलर ओक लेन ब्रेडफोर्ड 9 आले जिन्ना स्पेशल ऑफर कंडी मारी नक्का नतीला सिर्फ 2 पौंड ना कानस लाने ना 1 पौंड छापा दे बंगा नहीं कोई मजदूरी नहीं ब्याह शादी ने जेवरा पर स्पेशल डिस्काउंट है ते जे तुसा पुराना सोना बेचना है ते बहुत चंगे रेट पर देने ने।
0: एक बार फिर दसो केड़ी गली केड़ा पता?
1: चाचा जूलर्स ओक लेन ब्रेडफोर्ड 9 टेलीफोन 01274488935।
2: Do you ever wish your family's diet could be that little bit better? Then why not try Caratino Better Ghee, the healthier, low-cost butter ghee alternative? Caratino Better Ghee is around half the price of pure butter ghee, but it's cholesterol-free and lower in saturated fats. Better ghee tastes just like the finest butter ghee in cooking, so it's perfect for making all your favourite recipes. Look out for Caratino Better Ghee at Tesco, Asda, Morrisons and quality local grocery stores.

बहुत ही प्यारा गीत था प्यारे दोस्तों के लिए, और क्या कहने इस गीत के। और अब सब दोस्त जो हैं वो सुन रहे प्रोग्राम, स्पेशली दिनेश भाई, बहुत शुक्रिया फ़ोन करने का दिनेश भाई, और अच्छा लगा आपसे बात करके। इतनी लंबी बात नहीं हुई, छोटी सी बात हुई, लेकिन अच्छी हुई, अच्छा लगा। और आप जो हैं बहुत प्यारे हैं, और भाभी को अल्लाह सेहत दे, तंदुरुस्ती दे, काफ़ी से डाउन थी उनकी, अब कुछ बेहतर हैं, तो दुआएं हैं उनके लिए। तो दिनेश भाई बहुत शुक्रिया फ़ोन करने का, तो आप के लिए एक प्यारा सा गीत ज़रूर पेश करेंगे। और अब मैं सोच रहा हूँ कौन सा गीत जो है वो आप के लिए प्ले किया जाए, पुराना गीत प्ले किया जाए या नवा। आप ज़्यादातर गज़लें पसंद करते हैं, और कोशिश करूँगा प्रोग्राम के दौरान अगर कोई गज़ल मिल जाए तो अच्छा है, लगा दूँगा, लेकिन ना मिली तो कोई बात नहीं, कोई और अच्छा और प्यारा सा गीत आपके लिए पेश करूँगा। फ़िलहाल मैंने सोचा दिनेश भाई आपको और ग़ुलाम भाई, हीरा साहब, तारिक ज़ुल्फ़ी साहब, चौधरी मुजफ्फर साहब और दीगर जो दोस्त हैं उनके लिए भी ये गीत पेश किया जाए।

0: जी दोस्तों साथियों, ये आपका अपना सनराइज रेडियो है और आमिर शहजाद आपसे मुखातब है और प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में आगे हैं। उम्मीद रखते हैं प्रोग्राम का पहला हिस्सा आप दोस्तों ने पसंद किया होगा और कोशिश होगी इस आवर में भी आपके लिए अच्छे और प्यारे से गीत पेश करने की कोशिश करें। मौसम काफ़ी खुशगवार है, गर्मी है आज और कल, परसों और तरसों, ये जो जनाब अब तीन दिन रहते हैं, वेंसडे थर्सडे फ्राइडे, काफ़ी गर्मी होगी। बचत कीजिएगा अपनी, कोशिश कीजिएगा कि हीट से बचा जाए। और यानी कि वेंसडे थर्सडे फ्राइडे गर्मी है, उसके बाद फिर टेम्परेचर ड्रॉप हो जाएंगे, फिर पूरा महीना मेरे ख्याल में कई बार 22 तक जाएगा, 21 तक जाएगा, उसके ऊपर नहीं जाएगा। तो अच्छा मौसम है आज, तो इंजॉयबल है, कल शायद थोड़ी गर्मी हो, ज़्यादा गर्मी हो। चलिए तीन दिनों की तो बात है, तो महबूब अली साहब फोन करने का शुक्रिया जनाब। आने वाला गीत आपके नाम करेंगे, गीत ऑफ द आवर की शक्ल में जो गीत पेश करने जा रहे हैं, और जनाब बहुत ही प्यारा गीत है आप प्यारे दोस्तों के लिए पेश करने जा रहा हूँ। बड़ी प्यारी शायरी है, थोड़ा स्लो गीत है लेकिन शायरी बहुत अच्छी है, तो चलते हैं सुनते हैं इस हिट ऑफ द आवर को।
1: The hit of the hour brought to you by Hope Yorkshire. Telephone 0800 015 7866.

0: जी था जनाब, बहुत ही प्यारी शायरी के साथ आप सभी दोस्तों के लिए पेश किया था और उम्मीद रखता हूँ कि आप सभी ने इस गीत को इंजॉय किया होगा। और अब जनाब चलेंगे, टाइम चेक करेंगे, उसके बाद प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं।
1: सनराइज रेडियो, योर साउंडट्रैक, योर टाइम चेक।
0: दोस्तों, हमारे स्टूडियो की घड़ियां जो हैं वो बता रही हैं 12:13, यानी कि 12:13। तो चलेंगे जनाब कमर्शियल की जानिब। कमर्शियल के बाद आप एक प्यारा सा गीत सुनेंगे। मोहम्मद अकरम साहब, फ़ोन करने का बहुत बहुत शुक्रिया, आपने फ़ोन किया, माज़ी चाहते हैं आपकी कॉल नहीं ले पाया हूँ। तो जनाब और दीगर तमाम दोस्त जो इस वक्त सनराइज रेडियो की निशात को सुन रहे हैं, सबके नाम गीत होगा। तो चलते हैं, सुनते हैं कमर्शियल, कमर्शियल के बाद गीत, गीत के बाद मेरी और आपकी मुलाकात होती है।

0: क्या आप अपनी अंग्रेजी बेहतर करना चाहते हैं? क्या आप अपनी मैथ्स बेहतर करना चाहते हैं? शिपली कॉलेज आपकी मदद कर सकता है। शिपली कॉलेज मुफ्त में इंग्लिश मैथ्स ESOL कोर्सेज, चाहे आपको नौकरी हासिल करना है या आपको सिर्फ एतमाद महसूस करना है, हम आपकी मदद के लिए मौजूद हैं। बहुत से कोर्सेज अहलियत की शरायत पर होने पर मुफ्त हैं। मज़ीद मालूमात के लिए शिपली कॉलेज पर वेबसाइट जाएं।
1: बहन, तुमने शादी पर दुल्हन का जेवर देखा था? इतने प्यारे डिजाइन तो मैंने कहीं नहीं देखे। पता नहीं कहाँ से बनवाया होगा, इतना खूबसूरत सेट और चूड़ियाँ।
2: मैं जानती हूँ, उन्होंने सारा जेवर सूफिया बहन की सूफी ज्वेलर्स से बनवाया है। शादी में हर कोई जेवर की तारीफ कर रहा था।
1: सूफी ज्वेलर्स, वो कहाँ है?
2: सोफी ज्वेलर्स, 1192121 ओक लेन, ब्रैडफोर्ड 9, टेलीफोन 01274056014। सोफी ज्वेलर्स।

क्या जोड़ी थी जनाब अलका याग्निक और कुमार सानू की, है भी है अभी भी जोड़ी है। और अभी अलका याग्निक और कुमार सानू को आपने सुना, और अगला गीत जो आने वाला है ये भी कुमार सानू और अलका याग्निक की आवाज़ों में है, और ये गीत भी तमाम सुनने वालों के नाम। इन्जॉय कीजिएगा इस गीत को।

0: है, हमने भी विनोद राठौर का नाम कुमार सानू रख दिया जनाब, क्योंकि हमने कहा था अलका याग्निक और कुमार सानू। तो जनाब अब हमें हमारे प्यारे भाई प्यारे दोस्त जनाब गुलाम भाई ने फ़ोन किया, बहुत अच्छा लगा अपने भाई से बात करके हमेशा की तरह, और वहाँ उनके एक बड़े खूबसूरत प्यारे से नौजवान आए हुए हैं इंडिया से जनाब, उनके रिश्ते में भांजे लगते हैं और अभी बड़े खूबसूरत प्यारे हैं, नाम भी बहुत प्यारा यूसुफ साहब। जी हाँ, यूसुफ साहब काटा वाला जो है वो आए हैं जनाब गुलाम भाई से मिलने के लिए स्पेशली इंडिया से। तो जनाब बहुत अच्छा लगा यूसुफ भाई, गुलाम भाई के साथ जो साथ होता है बंदे का सदा जो है वो हमेशा याद रहता है, और उनकी बातें प्यारी बातें हैं, तो खूबसूरत प्यारे हैं गुलाम भाई हमारे, बहुत ही प्यारे हैं खूबसूरत हैं, और उनकी माशाल्लाह ज़बान भी बहुत खूबसूरत अल्लाह ने दी, और जो है वो किसी के साथ बात करें तो फिर हर बंदे का मन करता है कि इनके साथ बात करें मिले इनसे। तो हम भी इनसे बहुत बार मिले हैं लेकिन फिर भी प्यास नहीं बुझती, इतने प्यारे हैं फिर भी। अगर मैं बिजी ना हूँ इतना ज़्यादा तो जनाब काम कुछ ऐसे होते हैं, वरना तो मैं गुलाम भाई के साथ ही बैठा रहा करूँ हर वक्त, इनकी बातें सुनता रहा करूँ। तो यूसुफ भाई वेलकम, हम आपको इस अपने छोटे से शहर ब्रैडफोर्ड में खुश आमदीद कहते हैं, और उम्मीद रखते हैं आप अच्छी यादें लेकर जनाब यहाँ से जाएंगे, और जब तक यहाँ हैं तो जनाब हम आपका बहुत ख्याल रखेंगे। और गुलाम भाई तो माशाल्लाह बहुत ही मेहमान नवाज भी हैं और बड़े प्यार करने वाले हैं, आपका टाइम बहुत अच्छा गुजरेगा। और अब मौसम ऐसा यहाँ ब्रैडफोर्ड में आ गया है कि यूसुफ भाई सोचते होंगे यार मैं इंडिया में बैठा हूँ या इंग्लैंड आया हूँ। तो चलिए चार दिन है तीन दिन, उसके बाद तो फिर अच्छा जो धूप है वो मज़ा करेगा करेगी। तो यूसुफ भाई हम आप के लिए ढेर सारी दुआएं करते हैं, और आपके लिए गाना लगाएंगे अभी, लेकिन क्या है कि कमर्शियल के बाद हम हमेशा एक पंजाबी का गीत लगाते हैं, तो ये पंजाबी का गीत आप सभी दोस्तों के नाम करते हैं, फिर यूसुफ भाई आपके लिए गुलाम भाई की तरफ से इस पंजाबी के गीत के बाद ज़रूर आपके नाम करेंगे, और आप सभी इंजॉय कीजिएगा इस गीत को, और मोहम्मद अकरम साहब महबूब अलाई साहब और जनाब चौधरी मुजफ्फर साहब और मलिक इम्तियाज़ साहब इकमाज मनीर वसीम इमरान मुजाहिद अल्लाह देता उमेर बाबर इफराज आपके नाम भी, और इस वक्त काफ़ी सीढ़ियाँ काम कर रही हैं, नजमा साहबा हैं, इफ़त है, नाजिया हमीदा रुबीना बुशरा इकरा ताज़ीम जायदा और साइमा हैं, उनके नाम भी करेंगे, और मूना जी आपके नाम भी करेंगे। तो चलते हैं दोस्तों, सुनते हैं कमर्शियल, कमर्शियल के बाद पंजाबी का गीत गुरदास मान की आवाज़ में, उसके बाद आप दोस्तों से मिलते हैं।
1: Looking for a quality home to rent?
2: Whether you need a 1, 2, or 3-bedroom apartment or house, rent direct from a trusted family landlord with over 53 years of experience.
1: Nirmal Second Group offers a wide range of fully furnished properties, many with private parking, across Bradford, Huddersfield and Wakefield. With flexible tenancy options and homes available now, finding your next home couldn't be easier. Call 01274 744 62 or 077 900 35358. Nirmal Second Group. Quality homes from a landlord you can trust.
3: For your family treat this summer,
4: visit the Leighton Buzzard Railway and travel on a real heritage steam train.
3: Running every Sunday, plus Wednesdays and Thursdays during the school holidays. On August Bank Holiday, come and join the Pirates Attack and bring your own water pistol.
4: And for the younger ones, don't forget your chance to come and meet Bluey on Sunday, September 6th.
3: Find more details and book your tickets at buzzrail.uk.
4: The Leighton Buzzard Railway, England's friendly little line.
5: Class, it's been reported that if we keep using water like we are now, by 2055 we could be short by 5 billion litres a day.
6: Hold on, miss. 2055, we'll be grown-ups by then.
7: We're not having that, are we?
6: No. Oi, hear that? It's water and cans.
8: And fix those drips and drops.
9: And take shorter showers, yeah?
10: Because when we work together,
11: it all adds up.
12: So come on, you lot. Search Let's Save Water.
13: Thank you for making Sunrise Radio your favourite Asian radio station.

क्या गीत था, यकीनन आप दोस्तों ने पसंद किया होगा इस गीत को, प्यारा सा गीत था। और अब बारी आती है जनाब हमारे प्यारे दोस्त जनाब गुलाम भाई की। गुलाम भाई, आपने कहा कि आपके भांजे लगते हैं और वो यूसुफ भाई जो इंडिया से आए हैं, तो आप उनके लिए एक प्यारा सा गीत सुनना चाहते हैं, तो हमने सोचा कि क्या लगाएं क्या ना लगाएं, तो मुझे याद आई कि आप एक गीत बहुत पसंद करते हैं, तो जब भी वो गीत प्ले करता होता था तो गुलाम भाई आप फ़ोन करते होते थे, तो मैंने सोचा वो गीत आपके लिए पेश करूं आपकी जानिब से यूसुफ भाई के लिए। यूसुफ भाई, एक बार फिर आपको खुशामदीद, वेलकम ब्रेडफुट में, आपका अच्छा वक्त गुजरेगा गारंटी है, एंजॉय कीजिएगा इस गीत को। और सोनिया, आपने भी फोन किया, शुक्रिया आपका भी फोन करने का। और उसके बाद सिकंदर भाई, इस वक्त आप बाबर शाह पे नहीं है, आप छुट्टी पे हैं और मोटरवे पे जा रहे हैं, ड्राइव कर रहे हैं और साथ में सनराइज को सुन रहे हैं, आपके नाम भी करते हैं, सभी सुनने वालों के नाम करते हैं। गुलाम भाई, गुलाम भाई का फोन आ गया जनाब।

0: दिल है कि मानता नहीं। अनुराधा पौडवाल और कुमार सानू की मत भरी आवाजों में दोस्तों आपने बहुत ही प्यारा सा गीत सुना और दिल है कि मानता नहीं। यूसुफ भाई आप आए यहाँ तशरीफ लाए जनाब गुलाम भाई के यहाँ, तो आपका बहुत अच्छा टाइम गुजरेगा जनाब, क्योंकि गुलाम भाई की महफिल जो होती है साथ होता है, वो ऐसे होता है जैसे वो गाना नहीं आप आए बाहर आई, तो बाहर आ जाती है बंदे के दिल में। तो यूसुफ भाई आपके लिए एक पुराना गीत सदाबहार गीत भी होगा आपके लिए कमर्शियल के बाद, तो जनाब आप गपशप कीजिएगा और चाय वगैरह पीजिएगा। अब तो डिनर का टाइम हो गया है, चाय का तो वक्त नहीं है जनाब, तो शायद आप डिनर कर चुके हों और अब चाय की बारी हो, तो जनाब सुकून से आराम से चाय पीजिएगा और गानों को एंजॉय कीजिएगा। तो चलते हैं टाइम चेक करते हैं।
1: सनराइज रेडियो Your soundtrack, your time check.
0: दोस्तों हमारे स्टूडियो की घड़ियां बता रही हैं 12:48 यानी कि 48 minutes past 12, तो कमर्शियल का टाइम हो गया है जनाब। कमर्शियल के बाद गुलाम भाई, यूसुफ भाई आपके लिए, नवीद भाई और जनाब मोहम्मद अकरम साहब और हीरा साहब, तालिब जुल्फी साहब और जनाब हमारे बहुत ही सफीउल्लाह भाई, प्यारे भाई, उनके नाम भी और दीगर तमाम दोस्तों के नाम भी। तो चलते हैं सुनते हैं कमर्शियल, कमर्शियल के बाद गीत, गीत के बाद मेरी और आपकी मुलाकात होती है।

0: कोई परोंठे शुरूठे नहीं मिलन लगे। किचन विच सारा सामान मकिया पिया है। आटा चावल दाला गोश्त सब्जियां हर चीज लेन जाओ ते अद्धा दिन लग जाना है।
1: तुसी फिकर ए ना करो जी, हने ए एशिया सुपर स्टोर जाने आ, ते सारी शॉपिंग करके ले आने आ। उन्होंने नवी ब्रांच भी खोली है जिथे हर किस्म दा किचन ते घरेलू सामान बड़ी मुनासिब कीमतां ते मिल जाएगा और गोश्त भी उत्थों ही लवांगे।
0: वाह जी, चलो फिर आके परोंठे भी बनाने। नहीं,
1: एशिया सुपर स्टोर साउथफील्ड रोड ब्रैडफोर्ड 5, टेलीफोन 01274464446।
2: क्या आप अपने कारोबार को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं? सनराइज रेडियो के साथ तशहीर आपके ब्रांड की पहचान बढ़ाती है, सारिफिन का एतमाद कायम करती है और आपके कारोबार को मुसलसल याद रखवाती है। यॉर्कशायर, मैनचेस्टर, ईस्ट लिंकशायर और मिल्टन केन्स में नशरियात और मजीद इलाकों में बहुत जल्द। हमारी महदूद मुद्दत की खसूसी ऑफर के लिए आज ही कॉल करें 01274735043।
3: Classic hit of the hour brought to you by Sunrise Radio Gold, taking you down memory lane with non-stop classic hits from 50s to the 90s. SunriseRadioGold.com.
4: It's a classic hit. Flashback. Flashback. As we go down memory lane. Where were you when you first heard?

0: कि ये बन जाए फिर महफिल तन्हाई। यूसुफ भाई आप आए बहार आई
1: सारे जमाने पे।
0: तो जनाब उम्मीद रखता हूँ यूसुफ भाई आपको ये गाना पसंद आया होगा, आने वाला गीत भी आपके नाम करता हूँ। और उसके साथ सिकंदर भाई आपके साथ सोबत भाई भी हैं और आप दोनों जो हैं इस वक्त जो हैं वो सफ़र कर रहे हैं, गाड़ी चला रहे हैं, आपके नाम भी करते हैं। गुलाम भाई यूसुफ भाई इंजॉय कीजिएगा इस गीत को सभी दोस्तों के नाम।
1: रूप तेरा मस्ताना प्यार मेरा दीवाना।

0: जी दोस्तों साथियों, ये आपका अपना सनराइज रेडियो है और आमिर शहजाद आपसे मुखातिब है। प्रोग्राम के तीसरे और आखिरी हिस्से में आगे हैं। उम्मीद रखते हैं कि दोस्तों प्रोग्राम के दो हिस्से आप दोस्तों ने पसंद किए होंगे और कोशिश होगी हमारी इस आवर में भी आपके लिए अच्छे और प्यारे से गीत पेश करें। फिलहाल तो जनाब गुलाम भाई के यहाँ यूसुफ भाई आए हुए हैं इंडिया से, तो उनका स्वागत कर रहे हैं, उनको खुश आमदीद कर रहे हैं ताकि वो जब जाएं तो हमारे लिए ढेर सारी दुआओं के साथ जाएं यहाँ से और अच्छी यादें लेकर जाएं। तो थोड़े मस्ती भरे गीत होंगे, क्यों यूसुफ भाई आए हैं तो मस्ती भरे गीत होने चाहिए जनाब। तो चलते हैं, अब हिट ऑफ द आवर का गीत जो है वो प्ले करते हैं। और खान भाई बहुत शुक्रिया फ़ोन करने का, बहुत अच्छा लगा। आप इस वक्त काम पे हैं और आपके साथ हैं हमारे बांग्लादेश के प्यारे से भाई, आपके साथ इस वक्त हलाल भाई, और उनके नाम भी करेंगे इस उम्मीद के साथ कि उन्हें भी अच्छा लगेगा। जावेद मीर भाई बहुत शुक्रिया फ़ोन करने का, आपने भी अपने तमाम दोस्तों के लिए और सभी सुनने वालों के लिए गीत सुनना चाहा, तो आपकी जानिब से भी ये गीत होगा। तो चलते हैं दोस्तों, सुनते हैं मस्ती भरा गीत आप सभी दोस्तों के नाम, स्पेशली गुलाम भाई और जनाब यूसुफ भाई।
1: डिस्कवर स्टनिंग 4, 6 एंड इवन 8 बेडरूम होम्स। कॉल 0127-428-8252।
2: सनराइज रेडियो, हिट आफ्टर हिट, द हिट्स ऑफ टुडे एंड द हिट्स ऑफ टुमारो। सनराइज रेडियो, हिट ऑफ द आवर।

0: दोस्तों मोहब्बतें फिल्म से लिया हुआ गीत आप दोस्तों के लिए पेश किया हिट ऑफ द आवर की शक्ल में, तो इसके साथ ही चलते हैं टाइम चेक कर लेते हैं।
1: सनराइज रेडियो योर साउंडट्रैक योर टाइम चेक।
0: हमारे स्टूडियो की दोस्तों घड़ियां बता रही है 1:15, यानी कि 15:01, तो कमर्शियल का टाइम हो गया है जनाब। कमर्शियल के बाद एक प्यारा सा गीत होगा, मस्ती भरा गीत होगा, यूसुफ भाई और गुलाम भाई आपके नाम, आपके स्टाफ के नाम, और जावेद मीर भाई आप सब के नाम, और जनाब इस वक्त अमरीन साहब आपके नाम भी करेंगे, और इस वक्त बाबर शाह पे 3 शहजादे काम कर रहे थे लेकिन 2 कर रहे हैं, अब तीसरा जो है वो गायब हो गया जनाब, क्योंकि छुट्टी पे है और सड़कों पे घूम रहे हैं सोबत अली के साथ, और जनाब बशारत अली, आरिफ अली आपके नाम भी, और हीरा खान साहब आप भी मिस कॉलें दे रहे हैं आपके नाम भी करते हैं। तो चलते हैं दोस्तों, सुनते हैं कमर्शियल, कमर्शियल के बाद आप सुनेंगे मस्ती भरा गीत।
2: बहन तुमने शादी पर दुल्हन का जेवर देखा था? इतने प्यारे डिजाइन तो मैंने कहीं नहीं देखे, पता नहीं कहाँ से बनवाया होगा, इतना खूबसूरत सेट और चूड़ियाँ।
3: मैं जानती हूँ, उन्होंने सारा जेवर सोफिया बहन की सोफी ज्वेलर्स से बनवाया है। शादी में हर कोई जेवर की तारीफ कर रहा था।
2: सोफी ज्वेलर्स वो कहाँ है?
3: सोफी ज्वेलर्स 1192121 ओकलेन ब्रैडफोर्ड 9, टेलीफोन 01274056014। सोफी ज्वेलर्स।
4: Have you noticed the way fans shout at football matches?
5: Oh, wake up!
4: That's because conveying your message with sound is the most effective way to communicate to the players on the pitch that they're rubbish. And this works in advertising too. You see, research shows how brands that use radio to amplify their advertising are 49% more likely to get noticed. See radio differently at radiocentre.org.
6: Rishi's Vision presents Anand Utsav with Anand Murthy Guruma in Birmingham. Discover practical tools to quieten the mind and experience lasting inner peace directly from the revered master. A 3-day non-residential retreat to learn ancient techniques to move from stress to stillness. From 18th to 20th September 2026. 3 enriching days power-packed with yoga, meditation, profound talks and much more. At Holiday Inn M6 Junction 7 Chapel Lane, Birmingham B437BG. Registration required. Limited seats available. For more details call Benny 07901-831-165, Raman 07834177866, Usha 07931788062. Visit www.rishisvision.org or www.guruma.com.
7: Thank you for making Sunrise Radio your favorite Asian radio station.

तुम हम पे मरते हो हम तुम पे मरते हैं। साधना सरगम और विनोद राठौर की आवाज़ों में शोक और चंचल गीत सुना और ये गीत प्ले किया तो खान भाई आपका फ़ोन आ गया। आप कहने लगे यार इसी तरह का कोई गीत थोड़ा फास्ट सा गीत हमारे लिए भी प्ले कर देना, फारूक भाई के लिए भी और हलाल भाई के लिए भी। तो जनाब आपके नाम करते हैं आने वाला गीत और क्योंकि यूसुफ भाई आए हुए हैं तो हम चाहते हैं कि जनाब उनके लिए फास्ट फास्ट गीत प्ले करें, तेज़ गीत प्ले करें, मस्ती भरे गीत प्ले करें ताकि जो उनका हमारे साथ टाइम है, गुलाम भाई के साथ तो मस्ती होती रहती है लेकिन जो मेरा साथ है उनका वो भी थोड़ा मस्ती भरा हो जाए तो चलेंगे। अब जनाब ये प्यारा सा गीत मस्ती भरा गीत है और इसी गीत को प्यारी बहना शाहीन साहबा आपने भी फ़ोन किया, शुक्रिया फ़ोन करने का। आपके नाम भी करेंगे, आपके साथ साथ अमरीन साहब का नाम भी करेंगे और चलते हैं जनाब इस फास्ट गीत को सुनते हैं। गुलाम भाई यूसुफ भाई एंजॉय कीजिएगा।

0: जी दोस्तों, अभी आपने मस्ती भरा की सुना, एक और मस्ती भरा की आ रहा है जनाब। और शाइन बेना, आपने फिर फोन किया और कहा कि आपकी, हाँ आपकी बहन जनाब उजमा जी आई हुई हैं, तो आप गीत सुनना चाहती हैं। माजे चाहता हूँ, मैंने ये गाना क्यों करके रखा हुआ था, उम्मीद रखता हूँ कि आपको और आपकी बहन उजमा को पसंद आएगा। और दिनेश भाई, शुक्रिया फ़ोन करने का। यह मस्ती भरा गीत है, पुराना गीत आप पसंद करते हैं। आपने जिस गीत की फरमाइश की वो हमारे पास मौजूद नहीं है, अगर हमारे सिस्टम में होता तो ज़रूर अपने भाई के लिए लगाता। तो चलिए, मस्ती भरे गीत लग रहे हैं, क्योंकि इंडिया से यूसुफ भाई आए हुए हैं गुलाम भाई के यहाँ, तो हम चाह रहे हैं कि उन्हें अच्छा सा इंटरटेनमेंट दें। तो जनाब चलते हैं, सुनते हैं कमर्शियल, कमर्शियल के बाद गीत, गीत के बाद मेरी और आपकी मुलाकात होती है, सुनते रहिएगा।
1: 24 hours a day, 103.3. Looking for a quality home to rent?
2: Whether you need a 1, 2, or 3-bedroom apartment or house, rent direct from a trusted family landlord with over 53 years of experience.
1: Nirmal Second Group offers a wide range of fully furnished properties, many with private parking, across Bradford, Huddersfield and Wakefield. With flexible tenancy options and homes available now, finding your next home couldn't be easier. Call 01274 744 62 or 077 900 35358. Nirmal Second Group. Quality homes from a landlord you can trust.
2: Did you know radio advertising generates an average revenue return of £7.70 for every pound spent? It builds awareness, drives online searches, and keeps your business in customers' minds through regular, trusted exposure. Put the power of radio behind your business with Sunrise Radio, broadcasting across Yorkshire, Manchester, East Lancashire, and Milton Keynes, with even more areas coming soon. And as we prepare to expand our coverage further, ask about our limited special advertising offer. Call 01274735043

0: जी दोस्तों, अभी आपने अलका यकनिक और कुमार सानू की मत भरी आवाजों में प्यारा सा गीत सुना और वक्त हमें बता रहा है कि जनाब अब कोई गीत नहीं होगा। खान भाई, आपने फिर फ़ोन किया, शुक्रिया। आपको गाने अच्छे लग रहे हैं, आप इंजॉय कर रहे हैं, साथ में काम भी कर रहे हैं, तो अच्छी बात है जनाब। खुश हुआ दिल ये सुन के। और जैसा कि मैं कह रहा था कि आप कोई गाने नहीं होंगे, क्योंकि अब वक्त हमें बता रहा है कि जोहर की अजान का वक्त भी हो चुका है और उसके बाद जनाब कमर्शियल का टाइम भी हो चुका है, तो इसलिए जनाब अब गीतों का सिलसिला यहाँ रोकते हैं और आप दोस्तों को ले चलते हैं अजान की तरफ। अजान सुनाते हैं और उसके बाद दोस्तों आपसे मिलते हैं। सुनते रहिएगा मेरा और आपका साथ। अब इतनी देर तक नहीं रह गया है, तकरीबन 20 मिनटों तक रह गया है, जिसमें कमर्शियल भी है, अजान भी है, तो थोड़ा सा टाइम है मेरा और आपका साथ अब तो ज़रूर निभाइएगा। तो चलते हैं दोस्तों, सुनते हैं जोहर की अजान, उसके बाद अब दोस्तों से मिलते हैं।
1: ये अजान ब्रेडफोर्ड और गिर्दनवा के इलाकों के वक्त के मुताबिक पेश की जा रही है। आप अपने अपने शहरों के वक्त के मुताबिक नमाज अदा कीजिए।

0: ये अजान ब्रेडफोर्ड के वक्त के मुताबिक पेश की गई।
1: जी दोस्तों साथियों, ये आपका अपना सनराइज रेडियो है और आमिर शहजाद आपसे मुखातिब है। और अब आप जोहर की अजान सुन रहे थे और इसके साथ ही अब वक्त हमें बता रहा है कि कमर्शियल का टाइम भी हो गया है, तो चलते हैं पहले टाइम चेक कर लेते हैं।
2: सनराइज रेडियो, योर साउंडट्रैक, योर टाइम चेक।
1: जी दोस्तों, हमारे स्टूडियो की घड़ियां बता रही हैं 1:44 है, यानी कि 1:44। तो चलते हैं जनाब, अब एक और मस्ती भरा गीत होगा, पुराना गीत होगा, मस्ती भरा गीत है और आप दोस्तों की नज़र करना चाहेंगे और इस गीत को नज़र करना चाहेंगे खान भाई आपकी, दिनेश भाई आपकी और हीरा खान साहब, जावेद मीर भाई और जनाब तारिक जुल्फी साहब और ग़ुलाम भाई और यूसुफ भाई आपके नाम भी, सफ़ीउल्लाह भाई और दीगर तमाम दोस्तों के नाम, चौधरी मुजफ्फर साहब, चौधरी मुनीर साहब चक्की वाले और दीगर जो दोस्त हैं उनके नाम भी करेंगे। तो चलते हैं, सुनते हैं कमर्शियल, कमर्शियल के बाद गीत, गीत के बाद मेरी और आपकी मुलाकात होती है, सुनते रहिएगा।
3: Be part of something extraordinary at the Racial Equity Network Dinner, Leeds Bradford 2026.
4: On Friday the 23rd of October at the Madison in Bradford, join leaders, educators, entrepreneurs and community changemakers for an inspiring evening of discussion, networking and new ideas.
3: Hear influential speakers, share experiences and discover opportunities to make a positive impact.
4: Places are limited. Search REND Leeds Bradford on Eventbrite or call 0770 6923788.
5: Official media partner, Sunrise Radio.
6: Have you tried Caratino Better Ghee, the healthier, low-cost butter ghee alternative? Caratino Better Ghee is around half the price of pure butter ghee, but it's cholesterol-free and lower in saturated fats. Caratino Better Ghee tastes just like the finest butter ghee in cooking and is great for making healthy and delicious family meals. Look out for Caratino Better Ghee at Tesco, Asda, Morrisons and quality local grocery stores.

जी दोस्तों, अभी आपने ये मस्ती भरा गीत सुना, चांदनी फिल्म से लिया हुआ गीत था, जोली मुखर्जी और जनाब इस वक्त जो है वो श्री देवी जो है वो साथ निभा रही थी उनका। तो दोस्तों, प्यारी बहना सोनिया, आपने बर्मिंघम से फ़ोन किया, शुक्रिया फ़ोन करने का, और अच्छा लगा आप अपनी बहन से बात करके। तो आपके नाम और दीगर तमाम दोस्तों के नाम ये गीत करता हूँ जो इस वक्त सनराइज रेडियो की निशात को सुन रहे हैं। ये भी थोड़ा तेज़ सा गीत है।

जी दोस्तों, इसी के साथ ही मेरे प्रोग्राम का वक्त इख्तिताम पज़ीर हुआ चाहता है। बानो जी, आपने फ़ोन किया, लेट किया। चलिए कल के प्रोग्राम में गीत कोई ज़रूर लगाऊंगा आपके लिए। मुझे आमिर शहजाद को इजाज़त दीजिएगा, अगर अल्लाह ने चाह जिंदगी ने वफा की तो आपके साथ कल सुबह मेरी मुलाकात 11 बजे होगी। तब तक के लिए खुदा हाफिज़, अल्लाह निगबान एंड गुड बाय।

0: अफसेन जायकतुल मौत।
1: मुस्लिम फ्यूनरल सर्विस में कफन दफन फूलों का इंतजाम इस्लामी शरीयत के ऐन मुताबिक गुस्ल मैयत के लिए औरत और मर्द मौजूद हैं। टॉप क्वालिटी ग्रैनाइट मार्बल के हेडस्टोन्स और फुल कबर को 30 साल की गारंटी के साथ बनवाने के लिए भी मुस्लिम फ्यूनरल सर्विस का नाम याद रखें। मुस्लिम फ्यूनरल सर्विस 4 डार्फील्ड स्ट्रीट ऑफ लॉमलैंड ब्रेडफोर्ड 1 टेलीफोन 7230303 दास ब्रेडफोर्ड 7230303।
2: ਗਲੀਆਂ ਘੁੰਮੀ ਤੇ ਪੈਰਾਂ ਜੁੱਤੀਆਂ ਵੀ ਕਸੀ ਗਈਆਂ ਪਰ ਸਸਤਾ ਸੋਨਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ।
3: ਓਹੋ ਤੇ ਤੁਸਾਂ ਚਾਚੇ ਕੋਲ ਜਾਓ ਨਾ।
2: ਚਾਚਾ ਕਿਹੜਾ ਚਾਚਾ?
3: ਚਾਚਾ ਜੂਲਰਸ ਓਕਲੈਂਡ ਬ੍ਰੈਡਫੋਰਡ 935 ਟੈਲੀਫੋਨ 01274 4885935।

0: लड़े।
1: कोई परोंठे शुरूंठे नहीं मिलन लगे। किचन विच सारा सामान मकिया पी आए। आटा चावल दाला गोश्त सब्जियां हर चीज लेन जाओ ते अद्धा दिन लग जाना है।
2: तुसी फिकर ए ना करो जी, हने ए एशिया सुपर स्टोर जाने आ, ते सारी शॉपिंग करके ले आने आ। उना ने नवी ब्रांच भी खोली है जिथे हर किस्म दा किचन ते घरेलू सामान बड़ी मुनासिब कीमत ते मिल जाएगा और गोश्त भी उत्थो ही लवांगे।
1: वाह जी, चलो फिर आके परोंठे भी बनाने। नहीं,
2: एशिया सुपर स्टोर साउथफील्ड रोड ब्रैडफोर्ड 5, टेलीफोन 01274464446।
3: Want your business to reach more customers and stay front of mind? Advertising with Sunrise Radio connects your brand with a loyal, engaged audience across Yorkshire and our growing DAB network. Radio builds trust, increases awareness, and gives your business repeated exposure throughout the day. And right now, as Sunrise prepares to expand even further, we're offering a limited-time special advertising package. Promote your business today with Sunrise Radio. Call 012-74735 043.

0: कुल्लू नफसेन जायकतुल मौत।
1: मुस्लिम फ्यूनरल सर्विस में कफन दफन फूलों का इंतजाम इस्लामी शरीयत के ऐन मुताबिक। गुस्ल मैयत के लिए औरत और मर्द मौजूद हैं। टॉप क्वालिटी ग्रैनाइट मार्बल के हेडस्टोन्स और फुल कबर को 30 साल की गारंटी के साथ बनवाने के लिए भी मुस्लिम फ्यूनरल सर्विस का नाम याद रखे। मुस्लिम फ्यूनरल सर्विस, 4 डार्फील्ड स्ट्रीट ऑफ लॉमलैंड, ब्रेडफोर्ड 1। टेलीफोन 723030, दास ब्रेडफोर्ड 723030।
2: Be part of something extraordinary at the Racial Equity Network Dinner, Leeds Bradford 2026.
3: On Friday the 23rd of October at the Madison in Bradford, join leaders, educators, entrepreneurs and community changemakers for an inspiring evening of discussion, networking and new ideas.
2: Hear influential speakers, share experiences and discover opportunities to make a positive impact.
3: Places are limited. Search REND Leeds Bradford on Eventbrite or call 0770 6923788.
4: Official media partner, Sunrise Radio.
5: Rishi's Vision presents Anand Utsav with Anand Murthy Guruma in Birmingham. Discover practical tools to quieten the mind and experience lasting inner peace directly from the revered master. A three-day non-residential retreat to learn ancient techniques to move from stress to stillness. From 18th to 20th September 2026. Three enriching days power-packed with yoga, meditation, profound talks and much more. At Holiday Inn M6, Junction 7, Chapel Lane, Birmingham, B437BG. Registration required. Limited seats available. For more details, call Benny 07901 831 165. Raman 078 341 77866. Usha 0793 178 8062. Visit www.rishisvision.org or www.guruma.com.

0: बहन, तुमने शादी पर दुल्हन का जेवर देखा था? इतने प्यारे डिजाइन तो मैंने कहीं नहीं देखे। पता नहीं कहाँ से बनवाया होगा, इतना खूबसूरत सेट और चूड़ियाँ।
1: मैं जानती हूँ, उन्होंने सारा जेवर सोफिया बहन की सोफी ज्वेलर्स से बनवाया है। शादी में हर कोई जेवर की तारीफ कर रहा था।
0: सोफी ज्वेलर्स, वो कहाँ है?
1: सोफी ज्वेलर्स, 1192121 ओकलेन ब्रैडफोर्ड 9, टेलीफोन 01274056014, सोफी ज्वेलर्स।
2: Have you noticed the way fans shout at football matches?
3: Oh, wake up!
2: That's because conveying your message with sound is the most effective way to communicate to the players on the pitch that they're rubbish. And this works in advertising too. You see, research shows how brands that use radio to amplify their advertising are 49% more likely to get noticed. See radio differently at radiocentre.org.

0: कोई परोंठे शुरूठे नहीं मिलन लगे। किचन विच सारा सामान मकिया पिया है। आटा चावल दाला गोश्त सब्जियां हर चीज लेन जाओ ते अद्धा दिन लग जाना है।
1: तुसी फिकर ए ना करो जी, हने ए एशिया सुपर स्टोर जाने आ, ते सारी शॉपिंग करके ले आने आ। उना ने नवी ब्रांच भी खोली है जिथे हर किस्म दा किचन ते घरेलू सामान बड़ी मुनासिब कीमत ते मिल जाएगा और गोश्त भी उत्थों ही लवांगे।
0: वाह जी, चलो फिर आके परोंठे भी बनाने। नहीं,
1: एशिया सुपर स्टोर साउथ फील्ड रोड ब्रैडफोर्ड 5, टेलीफोन 01274464446।
2: क्या आप अपने कारोबार को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं? सनराइज रेडियो के साथ तशहीर आपके ब्रांड की पहचान बढ़ाती है, सारिफिन का एतमाद कायम करती है और आपके कारोबार को मुसलसल याद रखवाती है। यॉर्कशायर, मैनचेस्टर, ईस्ट लिंकशायर और मिल्टन केन्स में नशरियात और मजीद इलाकों में बहुत जल्द। हमारी महदूद मुद्दत की खसूसी ऑफर के लिए आज ही कॉल करें 012-747-3504-3।

0: नफसेन जायकातुल मौत।
1: मुस्लिम फ्यूनरल सर्विस में कफन दफन फूलों का इंतजाम इस्लामी शरीयत के ऐन मुताबिक गुस्ल मैयत के लिए औरत और मर्द मौजूद हैं। टॉप क्वालिटी ग्रैनाइट मार्बल के हेडस्टोन्स और फुल कबर को 30 साल की गारंटी के साथ बनवाने के लिए भी मुस्लिम फ्यूनरल सर्विस का नाम याद रखे। मुस्लिम फ्यूनरल सर्विस, 4 डार्फील्ड स्ट्रीट ऑफ लॉमलैंड, ब्रेडफोर्ड 1, टेलीफोन 7230 30 दास ब्रेडफोर्ड 7230 30।
2: तेरी गलियां कुमी ते पैरन ये जुतियां भी कसी गियां पर सस्ता सोना नहीं मिलिया।
3: ओहो ते तुसा चाचे को जाओ ना।
2: चाचा केड़ा चाचा?
3: चाचा जूलर ओक लेन ब्रेडफोर्ड 9 आले जिनाए स्पेशल ऑफर कंडी मारी न कहनती लाए सिर्फ 2 पौंड ना कानस लाने ना 1 पौंड छापा दे बंगा नहीं कोई मजदूरी नहीं ब्याह शादी ने जेवरा पर स्पेशल डिस्काउंट है ते जे तुसा पुराना सोना बेचना है ते बहुत चंगे रेट पर देने ने।
2: एक बार फिर दसो केड़ी गली केड़ा पता?
3: चाचा जूलर्स ओक लेन ब्रेडफोर्ड 9, टेलीफोन 01274488935।
4: Are you a business looking to make a real difference across our region? The Racial Equity Networking Dinner, REND Leeds Bradford, is seeking sponsors for its not-for-profit event on Friday the 23rd of October at the Madison in Bradford. Connect with influential leaders from business, education and public service, raise your organization's profile and demonstrate your commitment to race equity, inclusion and opportunity. For sponsorship opportunities, contact Shaheen today on 0770 6923 788. Official radio partner, Sunrise Radio.

0: बहन, तुमने शादी पर दुल्हन का जेवर देखा था? इतने प्यारे डिजाइन तो मैंने कहीं नहीं देखे। पता नहीं कहाँ से बनवाया होगा, इतना खूबसूरत सेट और चूड़ियाँ।
1: मैं जानती हूँ, उन्होंने सारा जेवर सोफिया बहन की सोफी ज्वेलर्स से बनवाया है। शादी में हर कोई जेवर की तारीफ कर रहा था।
0: सूफी ज्वेलर्स, वो कहाँ है?
1: सोफी ज्वेलर्स, 1192121 ओकलेन ब्रैडफोर्ड 9, टेलीफोन 01274056014। सोफी ज्वेलर्स।
2: Want to speak better English? Want to improve your maths? Want to earn more money? Shipley College can help. Shipley College's free English, ESOL and maths courses. Whether you want to find work or simply feel more confident, we're here to help. Many courses are free, subject to eligibility. Go to the Shipley College website.
3: Rishi's Vision presents Anand Utsav with Anand Murthy Guruma in Birmingham. Discover practical tools to quieten the mind and experience lasting inner peace directly from the revered master. A three-day non-residential retreat to learn ancient techniques to move from stress to stillness. From 18th to 20th September 2026. Three enriching days power-packed with yoga, meditation, profound talks and much more. At Holiday Inn M6 Junction 7 Chapel Lane, Birmingham B437BG. Registration required. Limited seats available. For more details, call Benny 07901-831-165, Raman 07834177866, Usha 07931788062. Visit www.rishisvision.org or www.guruma.com.

0: बहन, तुमने शादी पर दुल्हन का जेवर देखा था? इतने प्यारे डिजाइन तो मैंने कहीं नहीं देखे। पता नहीं कहाँ से बनवाया होगा, इतना खूबसूरत सेट और चूड़ियाँ।
1: मैं जानती हूँ, उन्होंने सारा जेवर सोफिया बहन की सोफी ज्वेलर्स से बनवाया है। शादी में हर कोई जेवर की तारीफ कर रहा था।
0: सोफी ज्वेलर्स, वो कहाँ है?
1: सोफी ज्वेलर्स, 1192121 ओकलेन ब्रैडफोर्ड 9, टेलीफोन 01274056014। सोफी ज्वेलर्स।
2: फ्री कोर्सेज एट शिपली कॉलेज, free teaching assistant courses, free health and social care courses, free childcare courses, free business and digital skills courses. Want a good job? Want to earn more money? Want to make your family proud? You can learn for free at Shipley College, subject to eligibility. No qualifications. Didn't go to school in the UK? Go to the Shipley College website.
3: Class, it's been reported that if we keep using water like we are now, by 2055 we could be short by 5 billion litres a day.
4: Hold on, miss. 2055? We'll be grown-ups by then.
5: We're not having that, are we?
6: No. Oi, hear that? It's water and cans.
7: And fix those drips and drops.
8: And take shorter showers, yeah?
9: Because when we work together,
10: it all adds up.
11: So come on, you lot. Search Let's Save Water.

ये अजान ब्रेडफोर्ड और गिर्दनवा के इलाकों के वक्त के मुताबिक पेश की जा रही है। आप अपने अपने शहरों के वक्त के मुताबिक नमाज अदा कीजिए।

0: कोई परोंठे शुरूठे नहीं मिलन लगे। किचन विच सारा सामान मकिया पी आए, आटा चावल दाला गोश्त सब्जियां हर चीज लेन जाओ ते अद्धा दिन लग जाना है।
1: तुसी फिकर ए ना करो जी, हने ए एशिया सुपर स्टोर जाने आ, ते सारी शॉपिंग करके ले आने आ। उना ने नवी ब्रांच भी खोली है जिथे हर किस्म दा किचन ते घरेलू सामान बड़ी मुनासिब कीमत ते मिल जाएगा और गोश्त भी उत्थो ही लवांगे।
0: वाह जी, चलो फिर आके परोंठे भी बनाने। नहीं,
1: एशिया सुपर स्टोर साउथ फील्ड रोड ब्रैडफोर्ड 5, टेलीफोन 01274464446।
2: Want your business to reach more customers and stay front of mind? Advertising with Sunrise Radio. Connect your brand with a loyal, engaged audience across Yorkshire and our growing DAB network. Radio builds trust, increases awareness, and gives your business repeated exposure throughout the day. And right now, as Sunrise prepares to expand even further, we're offering a limited-time special advertising package. Promote your business today with Sunrise Radio. Call 012-74735 043.

0: मम्मी ते पैरन ये जुतियां भी कसी गियन पर सस्ता सोना नहीं मिलिया।
1: ओहो ते तुसा चाचे को जाओ ना।
0: चाचा केड़ा चाचा?
1: चाचा जूलर ओकलैंड ब्रेडफोर्ड 9 आले जिनाए स्पेशल ऑफर कंडी मारी न कहनती लाए सिर्फ 2 पौंड ना कानस लाने ना 1 पौंड छापा ते बंगा नहीं कोई मजदूरी नहीं ब्याह शादी ने जेवरा पर स्पेशल डिस्काउंट है जे तुसा पुराना सोना बेचना है ते बहुत चंगे रेट पर देने ने।
0: एक बार फिर दसो केड़ी गली केड़ा पता?
1: चाचा जूलर्स ओकलैंड ब्रेडफोर्ड 9 टेलीफोन 01274488935।
2: Class, it's been reported that if we keep using water like we are now, by 2055 we could be short by 5 billion litres a day.
3: Hold on, miss. 2055? We'll be grown-ups by then.
4: We're not having that, are we?
3: No. Oi, hear that? It's water and cans.
5: And fix those drips and drops.
6: And take shorter showers, yeah?
7: Because when we work together, it all adds up.
8: So come on, you lot. Search Let's Save Water.

Rishi's Vision presents Anand Murthy Guruma in London. Learn timeless yogic wisdom directly from the revered master. Join a three-day series of enlightening talks on Yoga Sutras for realizing the true self, 11th to 13th September 2026. Life-changing sessions featuring profound talks, practical insights and powerful meditations at Hariben Bachubhai Nagrecha Hall, 202 Leighton Road, London, E151DY. On Friday 11th and Saturday 12th September, 6 p.m. to 8 p.m. and Sunday 13th September, 3 p.m. to 5 p.m. Free event, all are welcome. For more details, call AK Basra 07977201226. Mirdosh Kumar 07899055525. Gurkirit 07886545970. Usha 07931788062. Visit www.rishisvision.org or www.guruma.com. क्या आप अपने कारोबार को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं? सनराइज रेडियो के साथ तशहीर आपके ब्रांड की पहचान बढ़ाती है, सारिफिन का एतमाद कायम करती है और आपके कारोबार को मुसलसल याद रखवाती है। यॉर्कशायर, मैनचेस्टर, ईस्ट लिंकशायर और मिल्टन केन्स में नशरियात और मजीद इलाकों में बहुत जल्द। हमारी महदूद मुद्दत की खसूसी ऑफर के लिए आज ही कॉल करें 012-747-3504-43।

0: Rishi's Vision presents Anand Utsav with Anand Murthy Guruma in Birmingham. Discover practical tools to quieten the mind and experience lasting inner peace directly from the revered master. A three-day non-residential retreat to learn ancient techniques to move from stress to stillness. From 18th to 20th September 2026. Three enriching days power-packed with yoga, meditation, profound talks and much more. At Holiday Inn M6 Junction 7 Chapel Lane, Birmingham B437BG. Registration required. Limited seats available. For more details, call Benny 07901 831165, Raman 078 341778666, Usha 07931788062. Visit www.rishisvision.org or www.guruma.com.
1: गलियां कुमी ते पैरें ये जुतियां ही कसी गियां पर सस्ता सोना नहीं मिलिया।
2: ओहो ते तुसा चाचे को जाओ ना।
1: चाचा केड़ा चाचा?
2: चाचा जूलर ओक लेन ब्रेडफोर्ड 9 आले जिन्ना स्पेशल ऑफर कंडी मारी नक्के नती लाए सिर्फ 2 पौंड ना कानस लाने ना 1 पौंड छापा ते बंगा नहीं कोई मजदूरी नहीं ब्याह शादी ने जेवरा पर स्पेशल डिस्काउंट है ते जे तुसा पुराना सोना बेचना है ते बहुत चंगे रेट पर देने ने।
1: एक बार फिर दसो केड़ी गली केड़ा पता?
2: चाचा जूलर्स ओक लेन ब्रेडफोर्ड 9 टेलीफोन 01274488935।

0: परोंठे शुरूठे नई मिलन लगे। किचन विच सारा सामान मकिया पी आए, आटा चावल दाला गोश्त सब्जियां हर चीज लेन जाओ ते अद्धा दिन लग जाना है।
1: तुसी फिकर ए ना करो जी, हने ए एशिया सुपर स्टोर जाने आ, ते सारी शॉपिंग करके ले आने आ। उना ने नवी ब्रांच भी खोली है जिथे हर किस्म दा किचन ते घरेलू सामान बड़ी मुनासिब कीमत ते मिल जाएगा और गोश्त भी उत्थों ही लवांगे।
0: वाह जी, चलो फिर आके परोंठे भी बनाने नहीं।
1: एशिया सुपर स्टोर, साउथफील्ड रोड, ब्रैडफोर्ड 5, टेलीफोन 01274464446।
2: Did you know radio advertising generates an average revenue return of £7.70 for every pound spent? It builds awareness, drives online searches, and keeps your business in customers' minds through regular, trusted exposure. Put the power of radio behind your business with Sunrise Radio, broadcasting across Yorkshire, Manchester, East Lancashire, and Milton Keynes, with even more areas coming soon. And as we prepare to expand our coverage further, ask about our limited special advertising offer. Call 0127 473 5043.
3: Sunrise Radio.

ये अजान ब्रेडफोर्ड और गिर्दनवा के इलाकों के वक्त के मुताबिक पेश की जा रही है। आप अपने अपने शहरों के वक्त के मुताबिक नमाज अदा कीजिए।

0: कोई परोंठे शुरूठे नहीं मिलन लगे। किचन विच सारा सामान मकिया पिया है। आटा चावल दाला गोश्त सब्जियां हर चीज लेन जाओ ते अद्धा दिन लग जाना है।
1: तुसी फिकर ए ना करो जी, हने ए एशिया सुपर स्टोर जाने आ, ते सारी शॉपिंग करके ले आने आ। उना ने नवी ब्रांच भी खोली है जिथे हर किस्म दा किचन ते घरेलू सामान बड़ी मुनासिब कीमत ते मिल जाएगा और गोश्त भी उत्थों ही लवांगे।
0: वाह जी, चलो फिर आके परोंठे भी बनाने। नहीं,
1: एशिया सुपर स्टोर साउथ फील्ड रोड ब्रैडफोर्ड 5, टेलीफोन 01274464446।
2: बंगा नी कोई मजदूरी नी, ब्याह शादी ने जेवरा पर स्पेशल डिस्काउंट है। जे तुसा पुराना सोना बेचना है ते बहुत चंगे रेट पर देने ने।
3: एक बार फिर दसो केड़ी गली केड़ा पता।
2: चाचा जूलर्स ओकलैंड ब्रेडफोर्ड 9, टेलीफोन 01274488935।

0: छड़े।
1: कोई परोंठे शुरूंठे नहीं मिलन लगे, किचन विच सारा सामान मकिया पी आए, आटा चावल दाला गोश्त सब्जियां हर चीज लेन जाओ ते अद्धा दिन लग जाना है।
2: तुसी फिकर ना करो जी, हने ए एशिया सुपर स्टोर जाने आ, ते सारी शॉपिंग करके ले आने आ। उन्होंने नवी ब्रांच भी खोली है जिथे हर किस्म दा किचन ते घरेलू सामान बड़ी मुनासिब कीमत ते मिल जाएगा और गोश्त भी उत्थो ही लवांगे।
1: वाह जी, चलो फिर आके परोंठे भी बनाने। नहीं,
2: एशिया सुपर स्टोर साउथ फील्ड रोड ब्रैडफोर्ड 5, टेलीफोन 01274464446। Rishi's Vision presents Anand Murthy Guruma in London. Learn timeless yogic wisdom directly from the revered master. Join a three-day series of enlightening talks on Yoga Sutras for realizing the true self, 11th to 13th September 2026. Life-changing sessions featuring profound talks, practical insights and powerful meditations at Hariben Bachubhai Nagrecha Hall, 202, Leighton Road, London, E151DY. On Friday 11th and Saturday 12th September, 6 p.m. to 8 p.m. and Sunday 13th September, 3 p.m. to 5 p.m. Free event, all are welcome. For more details, call AK Basra 07977201226, Mirdosh Kumar 07899055525, Gurkirit 07886545970, Usha 07931788062. Visit www.rishisvision.org or www.guruma.com.
3: Want your business to reach more customers and stay front of mind? Advertising with Sunrise Radio connects your brand with a loyal, engaged audience across Yorkshire and our growing DAB network. Radio builds trust, increases awareness, and gives your business repeated exposure throughout the day. And right now, as Sunrise prepares to expand even further, we're offering a limited-time special advertising package. Promote your business today with Sunrise Radio. Call 012-74735 043.

ये अजान ब्रेडफोर्ड और गिर्दनवा के इलाकों के वक्त के मुताबिक पेश की जा रही है। आप अपने अपने शहरों के वक्त के मुताबिक नमाज अदा कीजिए।

0: कोई परोंठे शुरूठे नहीं मिलन लगे। किचन विच सारा सामान मकिया पिया है। आटा चावल दाला गोश्त सब्जियां हर चीज लेन जाओ ते अद्धा दिन लग जाना है।
1: तुसी फिकर ए ना करो जी, हने ए एशिया सुपर स्टोर जाने आ, ते सारी शॉपिंग करके ले आने आ। उन्होंने नवी ब्रांच भी खोली है जिथे हर किस्म दा किचन ते घरेलू सामान बड़ी मुनासिब कीमत ते मिल जाएगा और गोश्त भी उत्थों ही लवांगे।
0: वाह जी, चलो फिर आके परोंठे भी बनाने। नहीं,
1: एशिया सुपर स्टोर साउथफील्ड रोड ब्रैडफोर्ड 5, टेलीफोन 01274464446।
2: Are you a business looking to make a real difference across our region? The Racial Equity Networking Dinner, REND Leeds Bradford, is seeking sponsors for its not-for-profit event on Friday the 23rd of October at the Madison in Bradford. Connect with influential leaders from business, education and public service. Raise your organization's profile and demonstrate your commitment to race equity, inclusion and opportunity. For sponsorship opportunities, contact Shaheen today on 0770 6923 788. Official radio partner, Sunrise Radio.

नंबरदार पिया दिन मंगे वेख वेख सरपंच भी खंगे। नंबरदार पिया दिन मंगे वेख वेख सरपंच भी खंगे। मगर फिरे पटवारी पैड़ा होके नेड़े नेड़े